हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। किल बुख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखण काओ शय करता। श्री अहतुज जब पै दयाला।

दर्श हो गया। मैं महला ही कहते ना, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा महल। छे महलों तक दर्शन हो गए ने सच्चे पातशाह अगों किनिया क पातशाहियां ने गुरगद्दी नशीन होना है ते इस सिखी की तस्वीर जिहड़ी है ये मुकम्मल होएगी। गुरु कहन लगे अगम अगोचर सतगुरु, अगम अगोचर। गुरु जिहड़ा ये अगम अगोचर हुंदा है, अगम अगोचर कहिंदे जिहदी जिस चीज तक इंद्रियां दी पकड़ ना होवे। इंद्रियां अखां कन जे बाजनियां साड़ियां सेंसस ने ए उत्थों तक अप्रोच ना कर दियां होन, गुरु उस तों भी अगे दी गल है, उस तों भी अगे दी गल। अगम अगोचर सतगुरु, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह आ पहुंच सतगुरु। मुंह तो बोलते ने

आव विसवे चस्या कड़िया पहरा थिति वारी माह हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो हे काओ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंक होए जाते तेरै नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर होम मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गाड़ी पूर्वी महला पंचवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला आवद कटै दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ठहरा है। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लाग गए, प्रभु कह सिमरन अंध न जाग गए, प्रभु कह सिमरन पाओ न व्याप, प्रभु कह सिमरन दुख न संताप, प्रभु का सिमरन साधक संग, सर्व निधान नानक हर रंग।

प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरहे से जन जिन कहो प्रभु मया, नानक तिंजन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिया बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना, कटकट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु सात अष्टपदी।

दीने हस्त पाम कर्ण नेत्र रसना से त्याग अवर संरचना ऐसे दोख मठ अंध व्यापे नानक काढ़ लियो प्रव्यापे आदंत जो राखन हार तिस्यों प्रिय।

पावे अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तकार मिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना ही।

विश्वास न हो वह जिसकी वस्त आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्वर होवत जान अनेत बिरकी छाया सुरंग लावे बिन स्यो मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे ने तागु हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बिलय लाई मिथ्या धन धन गुडम सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज ओबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हसी आसु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या सुप्रकर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखद पार त्रेरुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पार विकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नान घर हर नाम लहे बिरथी सागत की आर्जा साज बना के हो बस सुच्चा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन ब्रेथा बेहाये मेघ बना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम ज्यो कृपन के निरार धाम तन तन तेजन जेह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तब्र कशबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अब्रभु

नानक अनुजन चरण पराता। करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे बाने, आपे आप करत न बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, भाव स्यान में सगल तेरा।

साधु की उपमा तय गुण तय दूर साधु की उपमा रही भरपूर साधु की शोभा का राहियन साधु की शोभा सदा भयन साधु की शोभा ऊंचते ऊंची साधु की शोभा मूछते मुची साधु की शोभा साध बने आई नानक साध बरा भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखा एक सबिन कोहे नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर्य सर्व का शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राजरंग को लागे तुल भवान ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो वसुदा गहु खोद गहु चंदन लेब ब्रह्म ज्ञानी का विह गुनाव नानक जो पावक सह स्वभाव

जपे गौ नाम जो जो जपे तिसकी गत होए स्वासंग पावे जन कोए कर कृपांतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्वरूप का औखत नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहो जुगत कितना पाइये धर्म नानक तिस मिलाए जिस लिखे

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज विमान सो नरक पाती हो विस्वान जो जाने मैं जोबनवंत सो होबत विष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बहु जौन प्रमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा सके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता कर गर्भावे तिरन समान का संग ना जावे बहु लश्कर मानुख पर करे आस पल भीतरता का हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे बिमान सोजन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे हाऊ तारे शरम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दरगे को कैसे गवाय आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सो ना ही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हाऊ छूटे सहस खटे लक उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कहू राजाय सुबन मनोरथ ब्रेथे सब काजाय नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके याद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने रंग सबते दूर सब हुंका संग बुझा देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिन से आप है ना जाए नानक सदी रया समाए आप उपदेशा समझे आपे रचया सबके साथ आप कीनू आपन विस्तार सब का शुष्का ओ करने हार उसते पेन का हो किस

राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जा घटे, संत के दुख ने जमते नहीं छुटे, संत के दुख ने सब सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख ने मत होए मरीन, संत के दुख ने सो बाते हीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत के दुख ने थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जय करे नानक, संत संग निंदक भी तर, संत के दुखन दे मुख पवै, संतन के दुखन काग जो लवै, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाए, संत के दुखन सब को छलाए, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी गाथाओं को राहे, नानक संत भावै ता ओए भी गत पाए।

विघ्न लग गोय उस्तत मन में कर निरंकार कर्मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुविला कर लह जियो नैनो बेग ठाकुर का रंग सा संग बिन से सब संग।

अनव जुगत राज थाप उथाप अविनाशी नाही कृष खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावन सकल संसार दुरे तनमंत प्रभु के सेवक सकल उदान प्रभु के सेवक दोग विसार।

जो स्वभाव सुप्रसन्न नष्ट बधि अविनाशी पर मन में राख मानु की तुम प्रीतिया इसते पर नाई किश को सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद।

पे जाने अपने मित गात, जिसकी सड़सों करने हार वरना बोझ करत विचार, करते कीमत ना जाने किया, नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जन बुझ्या आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे गुर गय वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार जागे संग तरा संसार, जनका सेवक सो बड़बा।

श्री ठाकुर को सेवक जन संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक जितया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ संभारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक ही सरबर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक ही आपद राखे ताकि गदमित कोय ना लाखे प्रभु के सेवक को ना बहुचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो पर अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दस दस प्रगटाया निकी गिरी में कल राखे भस्म करे लश्कर कूट लाखे जिसका सासना काट त्याप तागो राख दे कर हाथ मानस जतन करत बपान जिसके करता बिरथे जात मारे ना राखे वरण कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लाख भी डाणी बारंग बार बार प्रभु जबिये भी अमृत मंथन त्रभिय नाम रतन जन गुरुमुख पाया तिस किश अवर नाई दृष्टाया।

चरण कमल हृदय में उतारु। करण काल सो प्रभ समराधन कर गह हो नाम रत ए धन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एका सरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंड उठता में सो तन हर से बाते पावे जिस सुख कुंड बाछे में सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर गई सरणी। अनुग बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर आप खदलाए सर्व निदान मेर नाम निदान जब नानक दरगे प्रमान मन प्रबुद्ध हर कह नाय दैद स्थापते आवैठाए तागो बिघन न लागे को हे जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पावन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तम प्रगास तित कर जाए बसे बनासी कहो नानक काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा।

नानक नाम जपो गुंता शुभ जी प्रीत प्रेम रस चाहो मंत्र अंतर एही सुभाओ नेत्रो बेग दर सुखोय मान बिकसे साध चरण तोय भगजना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर भया गुरु प्रसाद नाम जप लाया ताकि मां गई ना जाए नानक रहा सर्व समाए

अजानन तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक नमक हरके गुण गाय अनगराज भोग बढ़ियाए हरके नाम की कथा मन भाई वह भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करणी शोभा तनवंत हृदय बसें पूर्ण गुरमंत सासंग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपति जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात तब इसका वर्ण चहन्ना जाप तब हर सो कहो किसे व्यापत जब आपने आप आपार ब्रह्म था महो कांग सोवत परम अपन खेला प्रतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अबार तब नर्ग सुर कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव संगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रह तब गमन ने डर गमन कत डराए आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अबार अविनाशी सुख आपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप आभिय चर्जा नानक आपन रूप आभिय परजा जय निर्मल पुरख पुरख बात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित्र लगत गौ गीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूकम दुर्वतावे करण करावन करणे हार नानक करते का राहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब गमन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्वकला पे परवीन तय वेद गदेव कह गौ चीन जब अपने आप आप उतारे तो सगन अब सगन कहाँ विचार जे अपन उजापनाप नेरा ते गौन ठाकुर गौन गई है चेरा

हो के ना कश करा आप लाकर तू ताजने की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बोत अपन संगराज ताकि गतविन कही ना जाए दूसरो ऐसा सोची पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तो सदा सुखे आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ धरवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब

भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस से आन पां लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियारा होई ऐन केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख सीस एक हुक्मी सदा पवाई है

जस कीरत जागले जे तिस नजर ना वही ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे।

जाने मन कोय, मन ने मार्ग ठाग न पाए, मन ने पास्यों प्रगट जाए, मन ने माग न चाले पंथ, मन ने धर्म से ती संबंध,

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाज तार

है। पाताल पाताल लख आगासाय अंगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन कवात सैस अठारह कैनक तेबा असलू एक तात

आखे ही सिर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दान में आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे।

सतगुरु प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साहिं दसवीं छपै शांत वै प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेह को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिजै। कोड़ इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजै। तिर भव महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै।

tang rihi menu bas tang krime namah tang nam tena bas tang man tena bas tah trage namah tang suhage namo sarva sokhang namo sarva pokhang namo sarva karta namo sarva harta namo yoga yoge namo pahug pahuge namo sarva dyale namo sarva pale chachari shan tvai prasad arup hai anup hai apu hai aju hai apu hai अरूप है अनूप है अजू है अपू है अपे अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है

है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, सांब है, अगम है, अजम है, अपहूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह

परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर में नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे।

कृपय कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट शांत वह प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखाल जोगे चाल भोगे अचाल राजे टाल साजे अखर धर्मंग अलाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत तव प्रसाद आदि रूपे अनाद मुहूर्त जोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेवादि उदार सर्व पालक सर्व

जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म वास है, जास के जास है, पजांग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे

भूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल क्रींदा समह तुल निवासी अजय विभूते गजय गनीमे हरियं क्रीमल की हरियं करियं क्रीमल ही में चतर चक्र वर्ती ही चतर चक्र भुगते सोयं सबंग सर्वदा सर्वजुगते

तित कार्यान हद वाजे साती लेवै बेन देह निमानी देह निमानी लेवै बाध्य हो क्या करे वे चारिया तदवा

पजाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे, हर भसे मन आए हारे। हरे आप उमुलक है, भागत ना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन मंजारा, हर रास मेरी मन मंजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जप हो जियो, लाह खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिन्ना मिलिया, जिन हरिया।

दृष्ट हुई। ये श्रवण हो मेरी हो साचय सुन नैनो पठाए, साचय सुन नैनो पठाए, श्री लाय सुन हो सतबाणी।

चित्र अंदर सब एक नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे वड़ियाई आपे ही गर्म कराइंदा वड़ोड़ा वड़वेदरी सिरे सिर तंदे लाइंदा नदर पट्टी जे मेरे चुता ना काऊ कराइंदा।

देखे किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मरो बिसारी है।

0: भवते
1: अनंगिया नामे समस्ते स्वरूपे
0: परपंगी परपामे समस्ति विभूते
1: कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राज राज परम परम रूपे
1: नमो जो जोगेशन परम सिद्धे
0: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
1: नमो शस्त्र पाने नमो वस्त्र माने
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमीय पोग्य पुगते
0: नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते
1: नमो नेत नारायण करूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रेत देवेश तर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो साहा नमो भू भूपे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमस्तक स्नान
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंतर जंतर
0: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी
0: रूपे रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा प्रेत कर्ता
0: ओ अंगम ओ हर्ता
1: परम परम परेश्वर पुरुष पालन
0: सदा सर्वदा सिद्धाता दयाल
1: अशेद्य पेद्य नामन कामन तेरा जो चाची सन चल है थल है पीत है पे है
0: प्रभु है जू है देश है देश है
1: पुजंग प्रयात शांत अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो नेत्र नेत्रे नमो नमस् नमस्तंग ननाथे नमस्तंग प्रमाथे
0: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
1: नमस्तंग काले नमस्तंग पाले।

0: सर्वज्ञ नमो सर्वपोके
1: नमो सर्वगीतं नमो सर्वपीतं
0: नमो सर्वज्ञानं नमो प्रमतानं
1: नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वतन्त्रं
0: नमो सर्वदर्शनं नमो सर्वकृष्णं
1: नमो सर्वज्ञानं
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
2: अखिज्य बीजे समस्तं प्रसिज्य
0: कृपा स्वरूपे को कर्म प्रणासी
2: सदा सर्वदा रित सिद्ध प्रणासी
0: चपर चरपर संत व प्रसाद अमृत कर्मे व्यर्थ तर्मे
1: अकाल जोगे
0: अटाल साजे अकाल अकाल अकाल तर्मन लाख कर्मन
2: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं पाने सर्वं माने
2: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता
2: सर्वं देवं
0: सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रोल शांत तव प्रसाद आदर रूप नाद मूर्त जोन पर खपार
2: सर्वमात्र प्राण देव बेवाल दार
0: सर्व पालक सब कालक सब

0: नेता सुनेता जाता जाता चपर संत और प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं
0: सर्वं कर्म सर्वं तर्मन
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: प्रसावर शांत तो प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे
2: अनंग स्वरूपे अपांगं विभूते
0: परमाथन परमाथे सदा सर्व साथे
2: अगाध स्वरूपे निर्बाद विभूते
0: अनंगिया नामे तरपंगी तरकामे
2: स्वरूपे निर्पंगी अनुपे
0: न पोतरे न पोतरे न सितरे न मित्रे
2: न ताते न माते न जाते न बाते
0: न साकरण सरीक है मित्र मीख
2: है सदैव कुर्बा है अजय है जाहर
0: भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
2: हमेशा सलाव है समस्त लकलाक है
0: के साहिब दमाग है के हसन चराग है
2: के कामल करीम है के राज करहीम है
0: करीमों को माल है के जुर्त जमाल है के अचन प्रकाश है के मित्र सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो भूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचल रंग है के मितो पंग है मद पर संत और प्रसाद
2: मन मन प्रणाम गण गण दाम
0: अर बर गंज हर नर परपंच
2: अन गण प्रणाम मन मन सलाम
0: हर नर खंड पर नर मंड
2: अन पवन आसत मन मन प्रकाश
0: गुण गुण प्रणाम चथल मदाम
2: अंचे जांग असार पांग
0: उपमा अपार कत मित उदार
2: जल थल मम देश विश व्यंत
0: जातल महात देश विश व्यंत अन पवन आस तर तर तरास
2: अर्जुन भाव से कैसे दाम
0: ओंकाराद कथिया नाद
2: खल खल खंडाल गर्भ आकार
0: कर प्रणाम चित चर नाम
2: अंचे जगात अजे जना बात
0: अंच अंच गात अनरंज बात
2: अंत उत प्रतार अंत अठ अपार
0: अठ रीत तर्मन अठ रीत कर्मन
2: अनंत दाता महंत
0: हर बोल मला शांत तो प्रसाद करनाले है करकाले अरकाल्या है
2: कलकंदल है ममंदल है
0: जगतेश्वर है परमेश्वर है
2: कल कारण है सब कारण है
0: तिरके त्रित के तरन है जग के करन है
2: मन माने है जग जाने है
0: सबन पर है सबन कर है
2: सब पासे है सब नासे है
0: करना कर है बसंपर
2: है जगदेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस है
2: परते पर है करना कर है
0: अजप अजप है तपा तप है
2: मृता कृत है मृता मृत है
0: अमृता अमृत है करना कृत है
2: कृता कृत है दर्णी त्रित है
0: अमतेश्वर है परमेश्वर है
2: कृता कृत है मृता मृत है
0: अजबा कृत है मृता मृत है
2: नायक है कलनायक है
0: बसंपर है करनालय
2: है नायक है सबकायक है
0: पपंजन है और गंजन है
2: तृप्तापन है जपजापन है
0: अकल कृत है सर्वकृत है
2: है हरता हर है
0: परमात्मा है सर्वात्म है
2: आत्म वास है जसके जस है
0: भुजंग प्रया शांत नमो सूर्य सूजे नमो चंद्र चंद्रे
2: नमो राज राजे नमो इंद्रे
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे
2: नमो बिन बिंद्रे नमो बीज बीजे
0: नमो राजन तासं सा

0: आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सत गुरु मैं पाया शब्द गावनिया
1: शब्दों तो गावो हरी केरा मन जनी बसाया
0: कहे नानक अनंत हुआ।

0: बिन सहज सहसा ना जाए,
1: नह जाए सहसा कदे संयम रहे कर्म कमाए।
0: सहसा जियो मलीन है कित संयम धोता जाए,
1: मन तो बहु शब्द लाग हो हर सिंह रहो चित लाए।
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे, इस सहसा

0: प्रवान हुआ जिन सतगुर सिया चितलाया।
1: ए नेत्रों मेरे हर तुम मैं जोत करी हर बिन अवर ना देखियो कोई,
0: हर बिन अवर ना देखियो कोई नदरी हर निहालिया।
1: ए वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
0: हर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई।
2: कहे नानक ए नेत्र अंत से सतगुर मिले देव दृष्ट होई।
0: ए श्रवणो मेरे साचे सुनने नो पठाए,
2: साचे सुनने नो पठाए सीर लाए सुनो सत बाणी।
0: चित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी,
2: साचा लख बनाणी ताकि गत कही न जाए।
0: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवे साचे सुनने नो पठाए।
1: हर जीव गुफा अंदर रख वाजा पवन बजाए,
0: बजाया वाजा पौन नो द्वारे प्रगट किया दसवां गुप्त रखाया।
2: गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया।
0: तह अनेक रूप नौ नव निद तिस दा अंत न जाय पाया।
2: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफंद रख कह वाजा पवन बजाया।
0: ए साचा सोहिला साचे कर गावो,
2: गावो ता सोहिला घर सच है जिथे सदा सच ध्यावे।
0: सचो ध्यावे जा तुद पावे गुरमुख जिना बजावे।
2: यो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे।
0: नानक सच सोयला साचे कर गावो
2: अंदर सुनो।

फते एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

सुतदारा सुप्रीत लगाई ये तो उत्तम पंथ सुनो गुर संगत मतरास मटाई इत रदास पाठ कीरत की

चित हो चित बनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो देहो ना संगमीत। सतनाम श्री वाहिगुरु सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाहां दे साहू जिस पास